0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Hey Rosie, Rosie, पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
2: क्या?
1: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
1: जब मुझे हुआ था
2: तो
1: मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
1: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
1: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
1: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
1: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
1: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया! रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
1: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
1: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
1: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
2: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

0: होठों पे सच्चाई रहती है,
1: जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Hamar Ujala Radio. Ujala.

हम आ गए हैं तो फिल्म आरज़ू का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुने और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अगला गीत सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल से आप सुनिए।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

हे सुनने वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप हर एक को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी और उसके जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप हर की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यार सुनवलो, मैं हूँ सुभाष और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूँ। हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9209907। हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक। हमारा वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। वेल, हमारे प्यार सुनने आज के प्रोग्राम में कुछ मिले जुले संगीत से हमें आप सभी को खिदमत करने वाला हूँ, आप सभी को सेवा करने वाला हूँ और आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद भी आएगा।

वेल कितना मोई कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने तुमसे ही जना रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनबलू और चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से बहुत ही दुलार से कहता हूं वेलकम यार।

बोले कभी कभी बोले बिछड़ना बोले आंसू बहाता हूँ, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यार सुनने वाले जो आप लोग सुन रहे हैं, मैं हूँ सुभाष और आप सभी को प्यार से दुलार से हम बोले लो हेलो अलमाओ।

वेल क्या क्या क्या मुझे प्यार है। आओ इस तरह से के की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और चलिए अब की बार तो गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

पल पल है यार। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यार रोशनी उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 20 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हर एक काम काज के लिए। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

वेल यार, कितना मोई गाना, कितना मोई अल्फाज जो आप लोग सुने, खुशियां खुशियां तेरा चुमलू, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, हमारे प्यारे सुनो

तूने मुझे चोरी से अपना बनाया और फिर हमें रोना सिखाया और हंसना सिखाया। क्या बात है। कामचोर फिल्म से आप सुने किशोर कुमार एंड लता जी से, और ये तो उजाला रेडियो है, आपको तो मालूम ही है ना। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे, मैथ्स लक्षणा पंडित जी।

भीगी भीगी वादियों में खो जाने को दिल कहता है सनम। मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम दिल ही दिल में, उजाला रेडियो पर अन्य लता जी के साथ मुकेश जी।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
1: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति।

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
2: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
1: नहीं आएगा? नहीं आएगा?
2: नहीं आएगा।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uzara Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

ये है उजाला रेडियो, यहाँ म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खाती है।

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बजकर 5 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, यह है उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बृहस्पतिवार है दोनों रख इस महीने का आखिरी, और वो भी 28 तारीख मई साल 2026। आपका सेवा करने आए लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज, जो अब से रात्रि में 11 बजे तक सेवा में हम पेश करने वाले हैं लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप हैं, तहदिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दिल की आवाज में फिर एक बार 3 घंटे लगातार कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ साथ कुछ दर्द भरे नगमाएं जो होंगी, उन नगमाओं के साथ आपका दिल हम बहलाएंगे। बस ये उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी सुनते वक्त भी पसंद करेंगे। आज का जो सिलेक्शन है, ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे से नौलो स्टूडियो में अवश्य आप ऐप कर सकते हैं 0303 9 लाख 9 लाख 02 03 3 6 3 08 08। सीधा यहां स्टूडियो में आपका ऐप आएंगे और रहे दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे से नौलो, आपके कामकाज के लिए आप दफ्तर को तार करिए, दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर 0304 09 09 07 0304 09 09 07, और वो भी सोमवार से शनिवार तक सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, फन मानदख तो में सातरख फन अफ मोरखन 3 यूर तो तिन में नख 3 यूर 0304 09 09 07 आपके हर एक कामकाज के लिए। और मेल अगर आप करना चाहोगे जो और बेहतर है, तो मेल आप लगातार 24 घंटे 7 दिन किसी भी वक्त किसी भी पल आप जब भी उजाला रेडियो को जरूरत पड़े किसी भी कामकाज के लिए आप मेल कर सकते हैं info@ujala.nl info@ujala.nl। प्यार ही जीने की जरूरत है, प्यार ही जीने की सूरत है और सबसे बड़ी जरूरत है, तो प्यार से क्या है डरना। आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे से नौलो एक मशहूर नगमा, महान कवि सॉन्ग राइटर लिखे इंदुवर साहेब जी का, और जो गाने वाले हैं किशोर कुमार, सेवा में पेश करने जा रहे हैं आज का ओपनिंग सिलेक्शन। शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए आज की ये प्रोग्राम आराम करता हूं। खा रहे होंगे तो स्वादिष्ट भोजन हो, सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के, और अगर आप काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना।

प्यार ही जीने की जरूरत है, क्योंकि प्यार ही ये जीने का सूरत भी है और जीवन का सबसे बड़ा जरूरत है। और क्या लिखा है इंद्रवर साहब जी ने आगे चलकर कि जीवन से हारे दिल को जीने का अरमा दो, जा देकर एहसान ना उतरे इतना बस प्यार करो। जोड़े बिना जुड़ जाता है ये दिलों का नाता है, और सांसें चलती नहीं इंसान को प्यार चलाता है। ये दिल भी अजीब सा चीज है मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल किस पर उनकी जो प्यार है, लग गया तो बस लग गया, अब वो सामने वाले इजहार करेंगे या नहीं, आप उन्हें बताएंगे या नहीं, लेकिन ये दिल जो है वो किसी को नहीं सुनता। अगर लग गया तो बस लग गया। एनफिल मैंसर सुलदा त्रल्बा आम हिल्सल मैंसर ओके नरलाटसिस देखम लॉफ लॉफ का बोले डॉक्टर ना वाती जा मैं क्या पुगली इस अर्फारिंग ये होर तोक डिंग्स ये वे तोक डिंग्स तच्चे तच्चे मैंसर लोग फिंट एन ओके नरलाटसी ना फिंग एन अंदर लोग मैं ये होफ्ते नीट टू सेगे Je hoeft er niks mee te doen verder. Maar dat komt allemaal uit je deal. Op oké, toen mag je follow kare takar. Dan mag je follow kare tanakar. Ja toch? Ye tha Indwar ka likha hua hai geet, mere pyare sunalo. Aaj ka opening selection, Haseeno ke Pujari Kishore Kumar. Aur Arman ka ek khubsurat nagma. उजाला रेडियो पर आप चुन किए हुए हैं मेरे प्यारे सुनवालो। 16 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 8 बजकर लाइफ एंड आर यू आर के स्टूडियो रोतनाम से दिल की आवाज नीति मोहन और जुबिन नौटियाल को पेश करता हूं एक गीत जो मनोज मुंटाजिर और नाजिर कासमी जी ने मिलकर लिखा। ये नजर भी अजीब थी, इसने देखने थे मंजर सभी, और देखे तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। सुन ले तो इस तरह का प्यार भी होता है, क्या बात है।

मेरा पहला जुनून तू, मेरा पहला जुनून इश आखरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी तू जिंदगी है तू। खूबसूरत गीत जो मिलकर गाए हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन, नजीर कासमी जी और मनोज मुंतजीर जी का लिखा हुआ फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते। मेरे प्यारे सुनो, मोहब्बत, मोहब्बत जो है, प्यार जो है, मोहब्बत जो है बहुत खूबसूरत होती है ना। और इतनी खूबसूरत चीज जो इतनी खुशियां लेकर आते, तो क्या हुआ अगर वो अपना साथ थोड़ा सा गम भी ले आए। कभी दिल टूट जाता है, निराश हो जाता है, ऐसे नहीं कि बंधन टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के चाल चलन से, किसी के किए पर कभी कभी आप सोचते थोड़ा थोड़ा दिल टूट जाता है, लेकिन प्यार बहुत खूबसूरत चीज होती है, ज्यादा से ज्यादा हमें खुशियां देते हैं। www.ujala.nl मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए आप जरूर एक बार झलक वहां। अरिजीत सिंह और अफसाना खान, मेरे प्यारे सुनने वालों, इरशद कामिल जी का लिखा हुआ गीत मिलकर गाएंगे कि सुबह सुबह अगर मैं जागू तो तेरी यादें, हाँ जी, सुबह सुबह दिन बनाने दे तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के। क्या बात है, इतनी प्यारे प्यारे शब्द, देखते हैं कितनी प्यार से इरशद कमिल का लिखा हुआ गीत अरिजीत सिंह मिलकर गाएंगे कि सुबह सुबह अगर मैं जागू तो तेरी यादें, हाँ जी, सुबह सुबह दिन बनाने दे तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के। क्या बात है, इतनी प्यारे प्यारे शब्द, देखते हैं कितनी प्यार से इरशद कमिल का लिखा हुआ गीत।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सिने वालों, तू इश्क है तो मैं बाहों में हूं, बाहों में हूं तू पनाहों में भी हूं, और काजल हूं तो मैं तेरी निगाहों में हूं, तू है तो मैं हूं। मेरे प्यारे सिने वालों, खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह और अफसाना खान, अरशद कमिल जी का लिखा हुआ, आप सभी ने सुने हैं। एयरफोर्स या वाटर सत्ता एयरफोर्स स्काईफोर्स सॉरी स्काईफोर्स का एक नगमा। मेरे प्यारे सुनो लो, रोमांटिक बातें हो रहे हैं, रोमांटिक गाने के जरिए रोमांटिक प्यार भरे शब्द अल्फाजे आप तक हम पेश कर रहे हैं। और कभी कभी प्यार, मेरे प्यारे सुनने वालों,

प्यार भी उन्हीं लोगों से होता है जिनको पाने का कोई चांस नहीं। स्वाति कनत बखिन से ऐसा भी होता है। तो आपको मालूम है कि वो कभी आप को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दिल फिर भी उन्हें प्यार करते हैं। दिल है मेरे बाबू, दिल जो चाहे वो करते हैं। दिल और वक्त जो है ये दोनों साथी बन सकते हैं। मेरे प्यारे सुनो, मैं आपको ले चलेंगे एक रोमांटिक सॉन्ग की ओर। अगर प्यार हो जाए तो एक दूजे से दूर बिल्कुल नहीं आप चाहेंगे, हर पल हर वक्त आप साथ साथ रहना पसंद करूंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत मैं सेवा में पेश करने जा रहा हूं। महान कवि सॉन्ग राइटर जिनकी संगीत अमर है, जो आदमी खुद अमर है, उनकी गाने कितने गाने हम इनके लिखे हुए पसंद करते हैं, रोजाना सुनते हैं। आनंद बख्शी जी, मुकेश और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजों में इनका लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं। Here on you are.

करीब तुम पास ना आना दूर ही रहना मोहे दर लागे जागे नैना सारी रहना और वो कहती है कि अब तो इब तुम दूर ना जाना पास ही रहना क्योंकि तोरे संग लागे मेरे नैना और तेरे बिन नहीं चैना। हार्ट ऑफ मिलियंस माहिती मुकेश जी मेरे प्यारे सुनवालो और नाइटिंगेल आयशा जी आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम रास्ते का पत्थर। और एक बात बोलूं मैं आपसे मेरे प्यारे सुनवालो, ऐसा ही बात है, मैंने कहा ना शुरुआत में, हमेशा उस इंसान के करीब आप हो जाए जो तुम्हें खुश रखे, जिनके साथ होने में आपका दिल बिल्कुल खुश है, मगर उस इंसान के और भी करीब आपको रहना चाहिए जो तुम्हारे बिना वो रह ना सके। मतलब ये कि वो आपसे ज्यादा वो तुम्हें प्यार करते हैं। मेरी मां भी कहा करता था कि मेरे लाल ये मुटनी तो मैं इसे अले नेमोम डचिया ही फनहार हो। ऐसा हो कि एक ऐसा लड़की जो तुम्हें भी प्यार करते हैं, एक दूजे अगर आप प्यार करोगे तो और भी मोई रहे, तू ओके मोई से रखिए, तू तो के मोई से रखिए। मैं इन सैद खलीफ थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्यार करते हैं, टूट पड़ते हैं, हासिल करना चाहते हैं किसी भी चाहे जमीन आसमान तो जाए मरत तत्लोप आउट स्पार्क तू जाने तो। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपको ले चलता हूं एक गीत की ओर, एक गीत जो मिलकर गाएंगे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति। और ये गीत जो है समीर का लिखा हुआ है, एक एल्बम का नगमा है और गीत कुछ ऐसा है कि दिल किसी और पर नहीं आता क्योंकि कोई तुझसा नजर नहीं आता, प्यार हो जाए एक बार अगर जिंदगी भर असर नहीं जानता। पेश करता हूं हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनधाम से।

किसी और पर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता। प्यार हो जाए एक बार अगर, जिंदगी भर असर नहीं जाता। एक तेरे पास आकर मैं, एक तेरे पास आकर मेरी तलाश तो खत्म हो गई। मेरी ये तलाश खत्म हो जाते हैं एक तेरे पास आकर। जब जब मैं जीने की वजह ढूंढता हूं तो बस मुझे तू ही तू नजर आए। क्या बात है। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति, मेरे प्यारे सुन वालों, समीर का लिखा हुआ गीत, नॉन फिल्मी सॉन्ग, ये एल्बम से निकाला गया है, मेरे प्यारे सुन वालों। और उजाला रेडियो पर दिल की आवाज में हमने आप तक ये गीत पेश किया है। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनोलो, जान निसार अख्तर जी का लिखा हुआ नगमा की ओर आपको ले चलेंगे। गीत सुरों का बादशाह द लेजेंड पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी और द मेलोडी क्वीन नाइटिंगेल, संगीत की देवी लता जी साथ देंगे। जाने क्या हो जाए जब से दिल से दिल टकराए, रफी साहब जी और लता जी।

ना जाने क्या हो जाए जब दिल से दिल टकराए। लता जी और रफी साहब जी की आवाजें में गीत जान निसार अख्तर जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुना है मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम आईना। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों ले चलते हैं आपको एक फिल्म की ओर। फिल्म का नाम है प्रेम कैदी और समीर का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग आप तक पेश करने जा रहा हूं। एसपी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति। आई लिव फॉर यू आई डाई फॉर यू। सांसों ने तेरी सांसों की सरगम होठों पे तेरे गीतों की शबनम दिल में बसा मेरा तू तू ही तू।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

मुझको मोहब्बत में धोखा तो ना दोगे, और कहता है कि धोखा तो मैं दूंगा। बोलना मुझको शिकायत का मौका तो ना दोगे, अरे मौका मैं नहीं दूंगा। दिल लेके क्या करोगे, मैं तो भाग जाऊंगा। सो जाऊंगी जब मैं तुम्हें जाग जाऊंगा। प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, क्योंकि प्यार में भी छेड़छाड़ होना चाहिए। ह्यूमर अंबिच प्लाख भी बहुत जरूरत है। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, नाइनटिंगेल हर्षा जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाजें, दिल दीवाना फिल्म का नाम। उजाला रेडियो है ये, 9 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 9 बजकर 9 मिनट ओवर क्लॉक फॉर 9 स्टूडियो रतनाम से, उजाला रेडियो के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम दिल की आवाज। हेर एंड्रू और चित्रा जी, डंकी वेल फॉर ये एपियर, डंकी वेल भी हम कहेंगे सुनील एटामसडम। प्रभा जी पता नहीं क्या हो रहे हैं, लेकिन जितनी भी खबर आपने ऐप किए हैं सभी मैंने पढ़ ली, जवाब भी दिया। प्रभा जी आयताम सदाम सेंद्रम डंकी वेल इन इरफाल, डना शहर का मिक डंकी वेल मिक फोड़िया ऐप, अमस्टरडम का आईफी जहांगीर को धन्यवाद, माइस को भी डंकी वेल माइस आयताम सदाम डंकी वेल आपके ऐप के लिए, अमसलफीन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी को भी हम कहेंगे धन्यवाद आपके ऐप के लिए, और धन्यवाद भी हम कहेंगे अपन स्वागरी, मेरा प्रिया जो है मेरे प्रिय स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी अत सुतमेर भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, और प्यार में हमेशा ट्विस्ट होते हैं, लेकिन उस ट्विस्ट को जीतना जितनी भी मुश्किल है, लेकिन कोशिश हमेशा करना चाहिए। जो लोग प्यार में हार जाते हैं और प्यार में इस तरह से हार जाते हैं कि वो अपना जिंदगी जिस तरह से वो चाहे नहीं बिता सकते हैं, बोतल उनके साथी हो जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। बहुत लोग तो वो भी उनका सहारा भी नहीं लेता है और मरने का इरादा अपने दिमाग में धर लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। प्यार जितनी भी हसीन है, खूबसूरत है, और जितनी भी हम पूरे जिंदगी उनके ढूंढ में हम रहते हैं, अगर मिले तो ठीक, अगर नहीं मिला तो कितने भी लोग हैं जो प्यार बिना भी जी ले लेते हैं। सुखलुप एन नीम नोइट पोनफरंत वोर्ड स्टप तू जाने तो। मेरे प्यारे सुनो लो, दिल की आवाज में समीर का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं, विपिन सखदेवा और अनुराधा पडोल जी की आवाजें, कि मिलते मिलते हसी वादियों में दिल खो गया तो क्या तुम करोगे, या वाट का ये दुन, अगर दिल खो गया तो क्या कर पाओगे बस।

मिलते मिलते हसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, अनजाने में जाने तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करोगे। खूबसूरत प्यार भरा गीत, और देखा ना इस गीत में भी जितनी प्यार भी है उतनी भी थोड़ा सा छेड़छाड़ भी है। विपिन सखदेवा और अनुराधा पौडवाल, समीर के कलम से लिखे हुए नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और फिल्म का नाम जुनून।

प्यार कैसे हो जाता है ना जाने कोई। प्यार एक ऐसा चीज है, दिल इसे पैदा करते हैं और किस पर ये छा जाता है, आ जाता है और छा जाता है कोई नहीं जानता। सुधाकर या सुदर्शन फाकिर जी, इनका लिखा हुआ गीत द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानू और सपना मुखर्जी मिलकर गाएंगे कि हो जाता है कैसे प्यार ना जाने कोई, बस एक हल्की सी चुभन मीठी सी अगन लग जाती क्यों यार, ये ना जाने कोई, ना जाने कोई।

हो जाता है कैसे प्यार, ना जाने कोई और ना जाने कोई। सुदर्शन फकीर जी का लिखा हुआ गीत कुमार सानू और सपना मुखर्जी ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम यादगार। मेरे प्यारे सिनेमा यादगार। छुपा लो तुमको, छुपा लो तुझको मेरी बाहों में, तुझे बजा लो सांसों में, छू लो तेरे होठों को, तुझे मेरा प्यार का वास्ता। सह ना पाओगी तेरी जुराई का गम, ये प्यार कहता है। प्यार की बयां हो रहे हैं, प्यार की बातें हो रहे हैं। रुक ना पाओगे आंखों की नमी, तेरी रहमत का नजर मुझ पे रहने दे। तुझे चुरा लूं तुझसे वो भी मेरे लिए, बाहों में ले लूं अपना, बांध लो मुझे। अब तुझे मेरा तेरा प्यार का वास्ता। अब मेरा प्यार तेरा भी प्यार हो गया और उसका वास्ता दे रहे हैं कि बांध लो, जगड़ लो मुझे इस तरह तुम अपने प्यार में, कि हम कभी फिर बिछड़ ना पाए। यह खेक कहें सही मेरे प्यारे सुना, आप दीवाने पन तक प्यार कर सकते हैं एक दीवाना की तरह। प्यार में लोग अंधा हो जाते हैं, क्या हो रहे हैं आसपास कुछ भी के खबर नहीं है इनको सिवाय प्यार का। शारदा एट आरएनएम धंकीवेल आपके अब के लिए, और रोहिणी कल्लू भी एट रतनाम धंकीवेल आपके अब के लिए। अमस्टल फिल्म का कमला धंकीवेल कमला फोर ये एपियर। हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों एक गीत की ओर। गीत का बोल ऐसे है कि मोहब्बत करने वालों को बहारो तुम दुआएं दो। लता जी की आवाज, संगीत की देवी लता जी की आवाज, और महान कवि सॉन्ग राइटर लिखे आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ गीत हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में।

तुम्हारा रास्ता देखें तो कब ये बात हो जाने, भला कब दिन ढले कब शाम कब रात हो जाने। निकाले अभी दिन में सितारों तुम दुआएं तो दो, मोहब्बत जान है इनकी वफा पैगाम है इनका, न कोई इनका मजहब है और ना कोई है इनका। मोहब्बत की बातें हो रहे हैं मेरे प्यारे सुनो, किसी भी नाम से इनको पुकारो लेकिन तुम दुआएं दो, उतारो सब नजर इनका लेकिन नजारों तुम दुआएं दो। मोहब्बत करने वालों को बाहर तुम दुआएं दो। लता जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत, और ये था फिल्म लवर्स का एक नगमा। घर की तरफ 6 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 9:06 ओवर द क्लॉक फन 3:30। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक जबरदस्त दर्द भरे गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। नीलेश मिश्रा जी का लिखा हुआ और स्वर्गीय के की आवाज कि मैंने दिल से ये कहा, ढूंढ लाना खुशी और ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही।

मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। ये बेचारा कहां जानता है खलिश है या खला है, सहर भर खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये राश ना आए, मजा तो बस गम में आया है। डर भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, जिसकी एक एक अल्फाज नीलेश मिश्रा जी ने लिखा, खूबसूरत आवाज में के ने गीत को गाए। फ्रॉम द मूवी रोक, मेरे प्यारे सुनने वालों, रोक से हमने नगमा निकाल कर आप तक पेश किया है। दिल की आवाज में एक डर भरे गीत और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, किस नाम से याद करेंगे हम तुमको आज के बाद। अरे बाप, बहुत ही खतरनाक नगमा है, किशोर कुमार आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ।

कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, किस नाम से याद करें हम तुझको आज के बाद। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ डर भरा गीत मेरे प्यारे सुनौलो किशोर कुमार की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनौलो। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 10 बजे की ओर। अभी 10 बजे ब्रेक होंगे, इश्तिहारे आप सुनेंगे, उसके बाद हमारे हिस्से का ये प्रोग्राम दिल की आवाज का आखिरी घंटा, क्योंकि रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और मेरे प्रिय सुनने वालों, आपको मालूम रहे कि आने वाले शनिवार जो इस महीना का आखिरी है, डेढ़ मई 30 तारीख मई को हम हाजिर नहीं रहेंगे। खीन आउटस्टैंडिंग फन सैटरडे नाइट फीवर। हम आप सभी से फिर मिलेंगे आज के बाद डन बेनेकर वुंस्टाग, जो पहला है नए महीना जूनी का, जून का पहला बुधवार 3 तारीख जून को सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। जिस अनस्थान साथ रख बेनेकर नीचे जली शेरवानी जी, इनका लिखा हुआ गीत रोमांटिक सॉन्ग हम आप तक पेश करने जा रहे हैं। द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और अलका याग्निक।

कल भी जाना बेकरार हो जाए और रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, मेरा दिल भी तेरा तलब गार हो जाए और रब करे मुझको भी प्यार हो जाए। खूबसूरत प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, जलीस शेरवानी जी इनका लिखा हुआ, The Name That Spells Magic, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक आखिरी गीत इस घंटे का, उसके बाद ब्रेक होंगे। ब्रेक के उस पार आप सभी से जरूर हम फिर मिलेंगे। आखिरी इस घंटे को छोड़ जाते हैं एक नगमा जो अलका याग्निक गाएंगे, समीर का लिखा हुआ नगमा है कि धैया धैया धैया रे।

जब दो पत्थर टकराएंगे तो क्या होगा, निकलेगा अंगारा। जब दो बादल टकराएंगे तो क्या होगा, पानी की निकलेगी धारा। और अगर जब दो दिल टकराएंगे तो क्या होगा, प्यार होगा, प्यार होगा। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, इंदवर साहिब जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। इंदवर साहिब जी लाजवाब बेमिसाल लिखे क्या ये, और क्या कविताएं, क्या नज़मे, क्या गीत। इंदवर साहिब जी बहुत महान सॉन्ग राइटर है, और इनके खूबसूरत लिखा हुआ गीत अपनी खूबसूरत आवाजों में किशोर कुमार और आशा जी ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम दो गुलाब। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है, और मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ तो 10:13 ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, और 11 बजे तक जैसे मैंने कहा आप सभी का साथ हम देंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, आने वाले शनिवार मैं सेवा में हाजिर नहीं रहेंगे, लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर आज बना रहा हूँ प्रोग्राम 11 बजे तक, और अगली बार जो आपसे मुलाकात होंगी वो है नए महीने का पहला बुधवार 3 जून को द्री रात्रि में 6 से 9 बजे, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। एक गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल, तुझे अपनी जिंदगी बना लूं, इन आंखों के झरोकों में छुपा लूं, ये कसम बड़ी है कसम, हर कसम की कसम से, कुछ इस तरह का बोल है, पेश करता हूं नगमा।

तुझे अपनी जिंदगी बना लूं और इन आंखों के झरोकों में छुपा लूं। खूबसूरत प्यार भरे गीत समीर का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम आवारा पागल दीवाना, आवारा पागल दीवाना। और इस आवारा पागल दीवाना के सॉन्ग के बाद ये इश्क नहीं आसान, और ये सही बात है, इश्क करना भी आसान नहीं। इश्क अगर हो जाए तो उन्हें निभाना भी आसान नहीं। हर एक चीज जो आप करेंगे आपको मेहनत करना पड़ता है, उसे मजबूत रखने के लिए। ये इश्क नहीं आसान का एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, अनवर हुसैन की आवाज, मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग अनवर हुसैन।

मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये डर्ट भरे गीत अनवर हुसैन की आवाज, ये इश्क नहीं आसान फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो, यहां से कुछ इससे भी पुराने नगमाए रात्रि में 11 बजे तक आपको सुनाने जा रहा हूं। एक रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, हमने तैयार करके रखा है कि बाग में फूल किसने खिलाए हैं, मैंने तो नहीं, अरे बाबा मैंने तो नहीं। खूबसूरत छेड़छाड़ सॉन्ग, संगीत की देवी लता जी और सुरों का बादशाह द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी।

भाग में फूल किसने ये खिलाए हैं, मैंने तो नहीं, मैंने तो नहीं। चोर कौन तारे किसने चुराए हैं, मैंने तो नहीं, मैंने तो नहीं। खूबसूरत प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, जो रवि साहब जी और लता जी ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम नाइट इन लंदन, मेरे प्यारे सुनने वालों, नाइट इन लंदन। प्यार भरा गीत जो हुआ छेड़छाड़, खूब उस गीत में जो आप तक हमने पेश किया है, एक और प्यार भरा नगमा बिहारी साहब जी का लिखा हुआ एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग पेश करने जा रहे हैं, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी और नाइटिंगेल आशा। और ये दोनों क्या गाने वाले हैं, चलो आपको सुनाते हैं।

बड़ी मुख्तसर है मुलाकात अपनी, मगर कह गया है दिल हर एक बात अपनी। और यूं ही क्यों ना गुजरे ये दिन रात अपने, हकीकत क्यों ना बने घड़ी भर के सपने। कभी कभी तो ऐसा होता रहा है ना, कि तुम्हारी अदा या हमारी अदा है, ये तुम भी ना सोचो ये हम भी ना सोचे, और नतीजा हमारी ये मोहब्बत का क्या है ये नतीजा, ये तुम भी ना सोचो ये हम भी ना सोचे। बिहारी साहब जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग, एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेशी और नाइटिंगेल आशा जी। हालांकि मूवी जो है मेरे प्यारे सिनेमा वालों, फिल्म का नाम पुरस्कार, तमाम नगमाए आल लीचर सैन टॉप। मैंने ये मूवी, चलो शायद 5-6 दाए देखे हैं सिर्फ गीत के लिए, क्योंकि मूवी एकदम फ्लॉप मूवी वार द लोस, लेकिन गीत बहुत खूबसूरत है। पुरस्कार आनंद बख्शी जी का एक फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग और जीता हुआ गीत लता जी की आवाज में आपको सुनाते हैं ये नगमा।

0: संगीत की देवी लता जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी और जीता हुआ गीत लता जी ने गाकर सुनाए हैं। जीने की राह फिल्म का नाम। लिसका सारदा सिंध मार्द का, पूनम और सूरीनाम का, अनीता जी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, डंकीवेल आपके ऐप के लिए। और बेहद खुशी है हम कि आप तीनों भी शुरू से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आपके ऐप के लिए। रजिंद्र कृष्ण जी का गीत आज हमने पेश नहीं किया, तो चलो हमने सोचा क्यों ना इनका एक नगमा हम पेश करें। किशोर कुमार और लता जी with this song.
1: ए रवि की माँ, ना गीता नजर आ रही है ना रवि नजर आ रहा है, कहाँ है दोनों?
2: आप घबरा क्यों रहे हैं? जवान बच्चे हैं, कहीं सैर तफरी को गए होंगे।
1: ये सैर तफरी का मौसम है, चल मेरा छाता दे, मैं उनको ढूंढूं। चल चल छाता दे मेरा।

दिल बेकरार है गले से लगा भी लो तो आओ लग जाओ ना और पलकों में अपनी मुझको छुपा लो ना तो बस आओ छुप जाओ ना तेरे मेरे प्यार की जो बात चली और खुल गया जब रास गली गली। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, संगीत की देवी लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार। फिल्म का नाम आंख मी चोली। मेरे प्यारे सुनने वालों, धुन आप सुन रहे हैं, इस धुन के साथ हमेशा दिल की आवाज हम आराम करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और आज ये 3 घंटे का प्रोग्राम इस धुन के साथ हम समाप्त करेंगे, क्योंकि जब भी ये धुन हम दोहराते हैं तो मतलब ये कि आखिरी गीत सेवा में हम पेश करने जाएंगे। और उस आखिरी गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, हम यहाँ स्टूडियो से रुखसत होंगे और आज जुदा नहीं होंगे, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कैसे, है ना। उम्मीद और आशा करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों की जिस तरह से प्रोग्राम आज सजाया गया है, नगमाएं जिस तरह से हमने पेश किया है, आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय की है, नगमाओं के साथ मजा ली है, आनंद ली है और मनोरंजन प्राप्त किया है। हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते फिर बृहस्पतिवार का दिन, पहला जो जून का है 4 तारीख यूनी, ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम फिर सजाने का लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनम से। आज जितने लोग भी साथ दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आखिरी गीत पेश करने से पहले मेरे प्यारे सुनो, एक नगमा है जो किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे, फ्रॉम द मूवी सीमा इंदवर का ये भी एक लिखा हुआ नगमा है। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।